वही गिले गिले मजार गया सिंगोर वही गिले मुझे भी जगन को तो तुम ही न्यू गिले मिंगे दानियल वाल तो इंजन लगी बोस हमुल कुदाव गिले गिले मजार गया

न्यायालय हुसैन इमाम हुसैन मोजरा बिस्तमसी अबू तमसीर इमार इमार बिन उमर उमर बिन बुबकर उमर बुबकर उमर मौत करना दूर का आदान साल आदान साल मैं कर दो बुनियों माफ मत आदान साल इसमें मुझे लेमी उम्मीद है न्यायालय में अंगूठ मुझ में ऐसे चारों Thank you.